0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम।

चूर सजदे, गुनाहों की चक्की में है चूर सजदे, घसीटे गुलामों से मजबूर सजदे, के सजदों में सर है भटकते हैं सजदे, सरासर सरो पे लटकते हैं सजदे, निगाहें खुजू में खटकते हैं सजदे, दुआओं से दामन झटकते हैं सजदे, वो सजदा

0: By the way, we have a call. Let's try to pick out and give a call. Assalamu alaikum, ji. Hello, assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum, assalam.
0: कौन बात करे मेरे प्यारे
1: बरकत
0: जी
1: जय
0: की जरिम से नुमाइंदा जिया बात कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच आपका कॉल कर रहे. यार आप बचे तेरा. नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो वाज स्टॉपिड इडियट. ठीक है मेरे बारे में राय कायम करना आप होती कौन हो के मुझे ये कहते हो. बस ठीक है वो कहते हैं ना sometimes I want to treat better how they treat me but I can't because it's not that's not my character otherwise. I know ke aage se jawab kaise dena hai.
2: Fazla sure kutahi jaran muhammad min ya nabi.
0: हाँ बिल्कुल काल पंजाब मरा कर. थैंक यू सो मच सब सख्त सख्त हो गए जेज वाले भुगत काल को. उसे पता चल गया यार कि बुद्ध बात करे. हाँ जी वैसे यार ये मैं अपना आश्चर्य समझू या अपनी मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसके बारे में.

0: अच्छा नेक्स्ट मैटर शिवाज, मैं आपको बताऊं कि मैं आपका क्या, मुझे कोई शौक नहीं है कि आप कौन जो भी हो, आई हैव नो इश्यू, जो भी हो बाण में जाओ मेरी तरफ से। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। गुड विल फ्रॉम माय साइड।
1: सरदार खैर रसूल सैयद वाला अरबी, सैयद वाला अरबी,
0: मैं कुछ नहीं कह सकता।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम कमकी बची सासो दर किस्म मरज इलाज कवलैशी लग शुगर ब्लड प्रेशर अरकुन्निसा ला दर्द सर दर्द दविख्तो बेवख्तस पीनी दिल वर्जी दिल दूसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदे मसले द गुर्दो मसले दस्तरगो मसले द गोगुनो मसले द पोजी मसले औ आग मरजुन कम चिप डाग दी औ आग मरजुन कम चिपट दी दगा द टोलो मरजुनो इलाज ख आसान तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा प दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब औ दगा रंगी बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब प जेर निगरानी के द सहर अतो बजो न माजिगर सलोरो बजो पूरी कीगी तासो बिल्कुल रात तले शही यो बेहतरीन इलाज यो कामयाब इलाज आगा तासो डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से अखपला ओपीडी द हफ्ते रुम्बने सलोर रज के भी पीर मंगल बद औ जुमरात दगाशाने ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगुई अखपलो पीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते अखिर ने द्रे रजी के भी जुमा हफ्ता औ इतवार नो पता याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम नोर मालूम दोपहारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3